0: गहना बनाउन
1: दुर्गा ज्वेलरी उद्योग खातबारी एक बुद्ध टोल प्रोप्राइटर गोपाल विश्व जनक पौडेली सम्पर्क नम्बर
0: 029562048
1: 9842059601
0: र 98520583

सा किराना पसल पाँच खपन छ डाँडा गाउँ स्कुल छेउ। प्रोप्राइटर टेक बहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 0 29 41 10 88 र 98 15 35 36 56।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे

0: बोलना चाहती हूँ कि जब सलमान सर ने मतलब मुझे बुलाया था इस मूवी के लिए के काम करना है, तो मैंने जब कॉल आया ना मुझे एक अननोन नंबर से,
1: मैं लड़का ढूंढ रही हूँ।
2: ढूंढ रही हो?
1: सर आप कर लो शादी मुझसे।
2: चलो ठीक है, अब यही मेरी जिंदगी है, तो इसे भी निभा लेंगे।
1: थैंक यू सर, आई लव यू।
0: आई लव यू।

0: आप देख रहे हैं सीधी बात। सलमान खान हुसैन हमारे साथ हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ, आप सेफाई महोत्सव में गए,
1: खड़ा कर दिया गया।
0: नहीं, खड़ा तो हुआ, खुद ब खुद हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें गए।
1: 18 लोग मरे सर, मरे हर जगह सर, ये कुछ न कुछ हो रहा है। सलमान खान एक जगह जाते हैं, एक राइड 6 महीने पहले हो चुके हैं। धूम उसके पहले एक पिक्चर आई जो कि लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर बहुत बड़ी हिट हुई। सर वो कहां के लोग थे सर? हिमाचल के लोग गए थे देखने के लिए?
0: नहीं,
1: गुजरात के लोग गए थे देखने के लिए? कहां के लोग गए थे? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चली रही है ना सर। हमें पैसे मिलते हैं, हम जाते हैं, किसके लिए नाचते हैं, डांस करते हैं, इंटरटेन करते हैं, ये हमारा प्रोफेशन, ये हमारा काम है। वो जो डेढ़ दो

0: प्लीज अपना नाम बताएं सबको।
1: जी मेरा नाम है सलमान खान।
0: सलमान खान, वाह।
1: सलमान तुम कहां से आए हो? जी मैं इंदौर की मेरी पैदाइश है, लेकिन मैं यहां पर बंबई में रहता हूं, बांद्रा में रहता हूं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: ये एक और एक सलमान है जो इंदौर से है और बांद्रा में रहते हैं। एक सिंगर है यहां पर सलमान।
0: हाँ ये
2: हाँ,
1: एक डांसर भी है सलमान, एक स्टार भी है सलमान, और एक मैं सलमान।
3: क्या बात है, वाह।
0: एक मिनट सर, बट कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आदमी बहुत मुसीबतों से लड़ते हुए यहां तक पहुंचा है। यहां इंडियन आइडल पे सिर्फ टैलेंट चलता है, तो आप प्लीज गाना सुनाए, बाकी प्लीज आइए। और ये हमारा सेंटर मार्क है, आप प्लीज यहां हिलना नहीं है, और करना बिल्कुल नहीं है, प्लीज ऑल योर्स। ठीक है, स्टूल की रचिए आपको,
1: बैठे तो, हाँ, स्टूल दे दो,
0: प्लीज स्टूल दो, टांगे कांपती है इंसान की खड़े हुए, इतने बड़े शो में। सर लगी माइक लगाइए, ओ तू नहीं है, हट। सर मैं बच्चे को एक बार क्या है, इनको थोड़ा एंकरेजमेंट देना जरूरी। आइए सर।
1: प्रणाम नहीं, ये हर्निया होने के चांसेस है इसमें, जरा संभल के।
0: सर अंदर की बातें अंदर रहने देते ना। और एक बार जोरदार तालियां।

0: For more updates, subscribe.
1: जीवन कोच में आपका स्वागत है। सलमान खान, उनको देखते ही उनकी फिटनेस और उनके चार्म को देखकर ऐसा लगता है कि बस भगवान बनाए तो ऐसा ही बनाए। ऐसे में सबसे जरूरी बात है सलमान खान का डाइट प्लान। क्या वो खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं कि वो इतना फिट है? जी हाँ, वो डाइट प्लान जो उन्हें 52 साल की उम्र में भी यंग और फिट बनाए रखता है। सलमान खान अपनी फिटनेस के मामले में युवा एक्टर्स को मात देते हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करने से गुरेज नहीं करते। बॉलीवुड के प्रेम, सुल्तान, दबंग और टाइगर नाम से पुकारे जाने वाले सलमान खान 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे में आज हम आपको सलमान खान का डाइट प्लान बता रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक बन सकते हैं। वो अक्सर माँ के हाथ का बना खाना ही पसंद करते हैं, जिसमें चिकन बिरयानी, राजमा चावल उनकी फेवरेट डिश बनी हुई है। पहले जहाँ वो सब कुछ खा लिया करते थे, अब वो वजन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हेल्दी फूड खाते हैं। लेकिन कभी कभी अपने मेन्यू में बदलाव करते हुए सलमान खान मोदक, कबाब और इटालियन फूड भी खा लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं सलमान खान का खास डाइट प्लान, जिसे आप भी अपना सकते हैं। सबसे पहले वर्कआउट से पहले वो क्या खाते हैं, ये आपको बताते हैं। सलमान खान अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से करते हैं, लेकिन वो वर्कआउट के पहले प्रोटीन शेक और 2 एग व्हाइट लेना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें वर्कआउट के लिए जरूरी एनर्जी मिल जाती है। वर्कआउट के बाद वो क्या लेते हैं? वो वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन बार, ओट्स, बादाम और 3 एग व्हाइट खाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सलमान खान के ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में वो क्या लेते हैं? सलमान खान ब्रेकफास्ट में 4 अंडे, केवल सफेद हिस्सा और लो फैट दूध लेना पसंद करते हैं, जिससे शरीर पर एक्स्ट्रा फैट से बचा जा सकता है और शरीर को उचित मात्रा में एनर्जी भी मिल जाती है। लंच में वो क्या लेते हैं? सलमान लंच में हमेशा मटन, फ्राइड फिश, सलाद और फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। इससे उन्हें जहां नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, तो वहीं वो सलाद और फ्रूट से आयरन, फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व भी लेते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। रात के खाने में सलमान अक्सर थोड़ा हल्का डिनर लेना पसंद करते हैं, जिसमें चिकन, फिश, उबली सब्जियां और सूप होता है। इसके अलावा वो अपने आप को फिट करने के लिए वर्कआउट और हेल्दी डाइट प्लान के साथ साथ साइकिलिंग, स्विमिंग और जिम करना कभी नहीं भूलते हैं। सलमान खान के लिए कहा भी जाता है कि ये बंदा रात को 2 बजे भी जिम करने चला जाता है। तो अगर आपको भी सलमान खान की तरह बनना है, तो अपने वर्कआउट से पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब की डाइट को भी फॉलो कीजिए और बन जाइए सलमान खान की तरह यंग, एनर्जेटिक एंड स्मार्ट। तो ये है सलमान खान की डाइट। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।

0: मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं यहाँ बाथरूम में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बोला यार बाबा एक घंटा लगेगा यार, उन्होंने बोल रहे थे लू नहीं छोड़ना आ जाना तुम जा जाए मेरे को भी जाना। उसके बाद न रुका
1: इस तरह
2: यो दृश्य चाहिँ हाम्रो सगरमाथाको चुचुरोको दृश्य है साथीहरू। हेर्नुहोस्
1: कुन कलाकारसँग अब दोहोऱ्याएर
3: भारत में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है?
0: नागालैंड बहुत अमेजिंग जगह है। आपको पता है नागालैंड के गांव?
4: सर मेरा सवाल ये है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं।
0: अच्छा जी।
4: लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज चैनल का मजाक नहीं उड़ा। सर क्या आप उससे डरते हैं?
0: सॉरी
4: क्या आपको उससे डर लगता है?
0: न्यूज तो सर न्यूज का कैसे मजाक कोई बना सकता है? न्यूज तो कितनी अच्छी होती है, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है।
5: आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
0: पक्का सर? तो ऐसा है
6: यो नगरीसम्म तपाईँले खाजा पानी केही खानु भएको छैन?

0: सलमान सर से जानना चाहूंगा।
1: यार अल्लू अर्जुन के अंदर सच में एटीट्यूड नाम का कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि अक्सर उनको कुछ ऐसे आउटफिट में स्पॉट किया जाता है जो सबको चौंका देता है। एंड रिसेंटली जब उनको इस ब्लैक टी शर्ट में देखा जाता है तो सबको लगता है कि ये कोई 1-2 लाख का।
2: ओए भाई ओए,

0: सैयर तू तो बदला नहीं है मौसम तेरा।
1: क्या है इस महीने की किस्त नहीं आई तेरी? चालक किस्त लेने के लिए गली गली ढूंढता है मुझे, ये ले। अपने आप टाइम पे भर दिया कर किस्त। अगर अगली बार तूने ईएमआई टाइम पे नहीं भरी तो तेरा एसी उठा के ले जाऊंगा। सोता रही हो गर्मी में।
2: क्या कहा? इस भरी गर्मी में एसी उठा के ले जाएगा मेरा।
3: मैं मुंबई गया ना अभी पहली बार, तो सोता है सबको।

0: तुम वहाँ क्या कर रहे हो कपिल? दो लड़कियों के पीछे खूबसूरत नौजवान लड़का क्या कर रहा है? एंजॉयिंग।
1: तुम होस्ट हो कपिल, तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
0: नहीं नहीं सर, मैं लड़ता भी हूँ, मुझे यहाँ भी होना चाहिए।
1: लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जितना ज्यादा वक्त यहाँ गुजारता है उनको ज्यादा पेमेंट मिलने वाला है।
0: क्या बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ,
0: मुझे लाइक सम बिस्किट। ये आपने मुझे पहले क्यों बताया करण सर?
1: तुम वहाँ क्या कर रहे हो कपिल?
0: दो लड़कियों के पीछे खूबसूरत नौजवान लड़का क्या कर रहा है? एंजॉयिंग।
1: तुम होस्ट हो कपिल, तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
0: नहीं नहीं सर, मैं लड़ता भी हूँ, मुझे यहाँ भी होना चाहिए।
1: लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जितना ज्यादा वक्त यहाँ गुजारता है उनको ज्यादा पेमेंट मिलने वाला है।
0: क्या बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ,
0: मुझे लाइक सम बिस्किट। ये आपने मुझे पहले क्यों बताया करण सर?
2: Say baba baba baba.
3: Leave it 1 second.
4: Kya karega babu?
5: Auntie, yo bato hospital jancha.
4: Bhai, aali pati galat bato aayecha. Aba mummy le sahi bato puraidinu huncha la. Mummy, bhai la ramro sangale purera aunu la. बाबु यो बाटो नसु जान क्या हो
5: हुन्छ।
4: अब त्यो पुग्छ राम्रोसँग हस्पिटल।

0: स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का।
1: वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन की दाढ़ी में मैंने एक दो देखे हैं। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे क्रिकेट टीम में, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते
2: थे।
1: उसके बाद सौरभ गांगुली बने, फिर सचिन सर बने, उसके बाद एमएस धोनी, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं।
2: कहना क्या चाह रहा है?
1: नहीं, मैं खाली चेक कर रहा था कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है ना। वैसे
0: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का।
1: वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन
3: अगर आप जानवरों को अलग अलग एंगल से देख

0: लंबी सांस लो। हाँ कुछ नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। नर्स इंजेक्शन लाओ।
1: हाँ ये लो।
0: हाँ और जरा जाके देखो 3 नंबर बेड पे जो पेशेंट है उसे होश आ गया क्या? जाओ।
1: क्या वो 3 नंबर वाला पेशेंट बेहोश था?
0: हाँ
1: मुझे लगा वो मर गया तो मैंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया।
0: क्या पोस्टमार्टम कर दिया? अरे रुको भाई साहब रुको,
2: कैसे डॉक्टर है रे, जिंदा रोगों को मार रहे
0: लंबी।
3: तपाईँलाई मर्नु भन्दा अगाडि के खानु भन्दा?
4: लोकल भाले र भात।
3: उहाँको इच्छा पूरा गर्न मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि लोकल भाले बनाउन,
4: मेरो भेजिटेरियन बेसिसहरू चाहिँ कुखुराको सट्टा पनिर हाल्नु,
3: अनि यो रेसिपी चाहिँ त्यही हो, सबै मसला हालेर एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दै बनाउनु।
4: तपाईँहरू पनि म जस्तै अल्छी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एउटा सिक्रेट,
3: महा अल्छी चाहिँ त्यही भएर मैले लोकल भाले चाहिँ रेस्पेस्टेसको वेबसाइटबाट अर्डर गरेँ। तपाईँलाई

0: ये जो तुम्हारा शो है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ।
1: भाई क्या बात कर रहे हो भाई, इतना कुछ तो है आपके पास।
0: नहीं मैं इस शो को खरीदना चाहता
1: हूँ। आईपीएल टीम है आपके पास, आपके पास इतनी फिल्में, इतनी एड्स, प्रोडक्शन हाउस है, यही भाई मेरा शो क्यों खरीदना चाहते हैं? इतने कम पैसे हैं आपके पास।
0: ये जो तुम्हारा शो है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ।
1: Fucking

0: और ये ऑनलाइन एग्जाम तो नालायको, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थूए अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो, प्लीज चलो दो एग्जाम।
1: सॉरी भाई, लगे क्यों है? कौन
0: तुम लोग सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरामी बनते हो? और ये ऑनलाइन एग्जाम तो नालायको, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थूए अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो, प्लीज चलो दो एग्जाम।
1: सॉरी भाई,
0: लगे क्यों है? कौन तुम लोग सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरा

0: कति टाइम लाग्यो आज हजुरलाई रेडी हुनलाई?
1: एकदमै लागेन
2: टाइम खास लाइक 20-25 मिनट.
0: कति टाइम लाग्यो आज हजुरलाई रेडी हुनलाई?
2: एकदमै लागेन
1: टाइम
2: खास लाइक 20-25 मिनट.
3: अनमोल सर, फर्स्ट ए, सेकेंड डी, थर्ड ए और फोर्थ सी, ये स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं ना सर, बहुत हरामी है सर. सर सुसु करके हाथ नहीं धोते. और फिर फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ सी और एट ए, ये जो बच्चे ना ये बहुत अच्छे हैं सर. ये सर सब हाथ नहीं धोते, सब धोते, हाथ भी धोते, सब कुछ धोते सर. और नाइन्थ और टेंथ के बच्चे, नाइन्थ और टेंथ,
4: अभी एमसीक्यू के क्वेश्चन ही आते
3: नहीं सर, उन बच्चों से हमारा वास्ता ही नहीं सर, हम बात बात नहीं करते उनसे.
5: अक्षय, पिछले 7 सालों में मैंने 3 फिल्में की, तूने 27 फिल्में कैसे कर ली?
2: तू एक साथ नहीं आ गया.
6: कितने बजे सो के उठता है?
5: 6:30.
6: ये 4 बजे उठता है. जब तक हम लोग उठते हैं या ये एक फिल्म खत्म. जब मैं पहुंचता था, ये सुबह आया होता था जब हम पहले काम करते थे, तो मैं इसको एक ही चीज बोलता था, तो दूध वाला.
5: अक्षय, पिछले 7 सालों में मैंने 3 फिल्में की, तूने.
7: अर्लिंग हालंद कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अपने पापा का सबसे सफल प्रोजेक्ट है. उनके पिता आल्फ इंगे हालंद खुद एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, लेकिन इंजरी की वजह से उन्हें कम उम्र में ही अपना करियर खत्म करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दिया. बचपन से ही हालंद की डाइट, स्लीप रिकवरी और फिटनेस को बहुत डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया गया. उसे सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं सिखाया गया, बल्कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव पावर पर सालों तक लगातार काम किया गया. आज उसका 6 फीट 4 इंच का शरीर, मॉन्स्टर लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ और कुछ ही सेकंड में डिफेंडर्स को पीछे छोड़ देने वाली स्पीड उसी मेहनत का नतीजा मानी जाती है. लेकिन सिर्फ बॉडी ही नहीं, उसके अंदर जीतने की भूख भी बचपन से डाली गई. जब दूसरे बच्चे आराम कर रहे होते थे, तब हालंद प्रैक्टिस कर रहा होता था. यही वजह है कि टैलेंट के साथ सही डिसिप्लिन और.
3: भाई लॉकडाउन कैसा निकला फिर आपका?
8: बहुत अच्छा निकला. लॉकडाउन में मैं फार्म पे था. अच्छा, सेकेंड भी फार्म पे तो अच्छा था.
3: हम आपकी फोटोग्राफ देखते रहते थे.
8: हाँ, वहीं पर वॉकिंग, शॉकिंग, ट्रैकिंग, खेती बाड़ी.
3: आप जब खेती करते हो ना, आपकी हेल्प करते मैंने देखा, बड़े किसान.